0: द एक्सप्रेस 9:50 1601 जबलपूर अमरावती अमृतसर एक्सप्रेस 9:55 22138 प्रेरणा एक्सप्रेस 10:25 11040 महाराष्ट्र एक्सप्रेस 10:40 12792 सिकंदराबाद एक्सप्रेस 11:00 12975 जयपूर एक्सप्रेस 11:05 12809 हावडा मेल 11:25 आणि 12615 ग्रँड ट्रंक एक्सप्रेस 11:25 या सर्व गाड्या आपल्या नियोजित वेळेवर धावत आहेत. आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. सकाळचे 6:00 आहेत. काही क्षणातच हिंदी बातम्या दिल्ली केंद्रावरून, ज्या आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है. ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई. इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की. श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है. यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी. न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है. इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है. 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया. श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे. इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे. किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है. श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया. इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे. तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं. प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी. समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है. विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं. उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया. डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं. फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को

0: को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मध्यम लहरी 512.8 मीटर म्हणजेच 585 kHz वर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 झालेले आहेत। प्रसारित करीत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम अर्चना।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्व गमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्ट मंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जागृतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणां अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासंगिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्य अमेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत्। इति वार्ताः।
2: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर्स म्हणजेच 585 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। सकाळचे 7 वाजले आहेत।

0: प्रियंका शेटे यांच्या आवाजात हिंदी भक्ती गीता आपण ऐकत आहोत.
1: पिक्चर क्लियर नहीं है.
2: अरे पर्दा ही मेला है.
3: अरे कुछ आता है कि नहीं?
1: सच है भैया, सुपर निर्मा से मिले सुपर सफेदी.

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग

0: तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4th अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी

0: की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ-साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा पार शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब चार दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इस

0: पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आम जिंदगी से लिए गए हैं, इसलिए उनके नॉवेल कारी पर गहरा असर छोड़ते हैं। आइए प्रेमचंद की नॉवेल निगारी के सिलसिले में सुनते हैं ये बातचीत। बातचीत का मौजू है प्रेमचंद की नॉवेल निगारी की खुसूसियात। आपसे मुखातिब है मोहतरमा उज्मा यजदानी।
1: अदब समाज और फर्द का आईना होता है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो अदब जिंदगी का तर्जुमान होता है, जिसमें इंसानी जज्बात व एहसासात, मुशाहदात व तजुर्बात और ख्यालात व नज़रियात की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। कोई भी अदीब अपने समाज के अकदार व तहजीब व तमद्दुन से बगावत करके आला अदबी शाहकार नहीं तख्लीक कर सकता है। हर एक अदबी तख्लीककार में दाखिली तजुर्बे और खारजी हकायक की बुनियाद पर वो अपनी तख्लीक को परवान चढ़ाता है, जिसमें उसके अहद के समाजी नज़रियात की कारफरमाइयाँ गायबाना तौर पर मुंतकिल होती है। उर्दू नावल की रिवायत 19वीं सदी के दूसरे निसफ में बाकायदा सूरत इख्तियार करती है। इब्तिदा में नावल का मकसद इस्लाह माशरा, अखलाकी तरबियत और समाजी शऊर की बेदारी था। डिप्टी नज़ीर अहमद, रतननाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने इस सिन्फ को मुख्तलिफ जहतें अता की। वक्त गुजरने के साथ नावल महज इस्लाही अदब तक महदूद ना रहा, बल्कि इसमें इंसानी नफ्सियात, माशरती पेचिदगियों, तबकाती कश्मकश और बदलते हुए जमाने की हकीकतें भी शामिल होती गई। इसी इर्तिकाई सफर में प्रेमचंद का जहूर उर्दू नावल की तारीख का एक अहम संगे मील साबित हुआ। प्रेमचंद ने नावल को जिंदगी के हकीकी मसाइल से वाबिस्ता किया। उनके यहाँ किसान, मजदूर, निचला मतवस्त तबका, औरत, जागीरदाराना निज़ाम, गुर्बत, इस्तेहसाल और अखलाकी कश्मकश भी सभी जिंदगी की सच्चाइयों के साथ सामने आते हैं। उन्होंने किरदारों को गैर मामूली नहीं बल्कि आम इंसानों की सूरत में पेश किया। इसीलिए उनके नावलों में कारी अपने माशरे की जीती जागती तस्वीर पेश करता है। सादा रवा और बेतकल्लुफ जबान, हकीकत निगारी, समाजी शऊर, किरदार निगारी की मजबूती और इंसानी हमदर्दी प्रेमचंद की नावल निगारी की नुमाया खसूसियात है। उन्हीं औसाफ ने उन्हें उर्दू नावल की रिवायत में एक मुनफरद और पायदार मकाम अता किया। अगर हम फिक्शन की तारीख और तख्लीकात पर नज़र डालें तो हमें प्रेमचंद की तनहाजात और शख्सियत ने अहद और समाज के सियासी, समाजी, इक्तिसादी, मजहबी और माशरती रिवायत, मुल्की और कौमी मसाइल पर नहायत बेबाकाना, मसलहाना और मुफक्किराना अंदाज में अपनी जुदत तबा, इस्तेदाद और इस्लाहियत का इस्तेमाल करते हुए कलम का जादू कुछ इस तरह चढ़ाती हुई नज़र आती है कि उनकी दूरबीनी नज़र और दिमाग की बसारत का अंदाज़ा अदब का एक आम कारी बआसानी कर सकता है। उनकी तख्लीकात में चाहे वो नावल हो या अफसाना, कहानी हो या ड्रामा, हर जगह तनकीद हयात के सीधे सादे असर अंगेज और पुरतासिर इशारे इंसानी जहन व दिमाग में इनकलाबी इर्तियाश की लहरें पैदा करने के लिए हिमा वक्त तैयार नजर आते हैं। प्रेमचंद की तख्लीकात जगबीती और आपबीती का मजमुआ है। उनकी जिंदगी बाजात खुद मुश्किलात और मसाइल से दो चार थी, इसलिए उन्होंने खुद समाज, माहौल और माशरे का मुताला व मुशाहिदा किया था और आगे चलकर यही मुताला व मुशाहिदा नक्श बेमिसाल बनकर उनके नावलों के किरदारों की जान और जबान बन जाते हैं और समाज की अदना व आला और जहरीरी सतह में इनकलाबी तब्दीली के जामिन बन जाते हैं। उनके नावलों के सफर का आगाज असरार माबित से होता है और अंजाम मंगलसूत्र पर होता है। इस तरह उन्होंने कुल 31 नावल लिखे, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी जिंदगी के गुनागु मसाइल और पहलुओं को उजागर करते हैं। उनके अहद का हिंदुस्तान जहालत की तह दर तह रिवायतों में उलझा हुआ था, मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तालीम आम नहीं थी, हर तरफ गुर्बत और अफलास ने डेरा जमाया हुआ था। ऐसे पुरआशोब दौर में समाज को बेदार करना, उनके अंदर शऊर पैदा करना बड़ी हिम्मत और हौसले की बात थी, लेकिन प्रेमचंद ने अदब की समाजी अफादियत को पेश नजर रखा है। प्रेमचंद के बेशतर नावलों ने जिंदगी का अक्स بہت واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ زندگی کے خطوط و نقش و نگار، نشیب و فراز

0: ज़र्ब लगाने की सही की कोशिश की है तो हम खुरबा व हम सवाब में ख्वातीन के मसले बेवगी को मरकजी हैसियत देते हुए अक्ते बेवगाना के मसले का हल तलाश करने की कोशिश की है और उनका जज्बा इस्लाह कुली तौर पर आर्या समाजी अकायद की तर्जुमानी करता है। अगर उन्होंने जलवा इसार में अपना इस्लाही नुक्ते नज़र मुकम्मल तौर पर नुमाया किया है और ख्वातीन के मसाइल जैसे कम उम्री में शादी, बेजोड़ शादी, तोहम परस्ती, जहालत और किसानों के माशी मसाइल वगैरह को मौजू बनाया है, खुसूसन कमसनी की शादियों के अलमनाक अंजाम की तरफ इशारा किया है। नौजवानी में बेवगी के अजाम में तशनाकामी और नातमामी के बिलाखेज अनासिर पेश करके समाज के एहसास व शऊर को पैदा करने की कोशिश की है तो नॉविल बेवा में भी हमारे जहन व शऊर और समातों को सीधे ख्वातीन के मसले से जोड़ा है। इसमें उन्होंने बेओ के दुख दर्द, ख्वाहिशात, एहसासात और उनके मसाइल का मजबूत हल तलाश करने की कोशिश की है। उन्होंने बाजारे हुस्न में तवायफों के मसाइल पर भरपूर निगाह डालते हुए माशरे की बुराइयों को अखलाकी और माशी नुक्ते नज़र से पेश किया है, साथ ही उनके मसाइल का हल भी निकालने की कोशिश की है। गोदान जैसे शाहकार नावल में उनके सियासी, समाजी और माशी नज़रियात फिक्र व नज़र के साँचों में ढल कर और तजुर्बात और मुशाहदात की आग में तप कर कुंदन बन जाते हैं और हिंदुस्तान का देहात और देहाती ज़िंदगी के मसाइल और उनके हल के लिए मजदूरों के बागियाना तेवर की इनकलाबी सूरत, जागीरदारों की दो चेहरगी, हुकूमतों के आमाल और मजहबी ठेकेदारों का इस्तेहसाली अंदाज, मिलों और कारखानों के मालिकान और मजदूरों के माबैन कश्मोकश, चमारों की बेदारी और नौजवान नस्ल में समाजी और माशी निज़ाम के खिलाफ उठने वाली बेदारी की लहर खालिस इंसानी बुनियादों पर हकीकत मजहर बनकर अमली सूरत में सामने आती है। और सबसे बढ़कर उनका अधूरा नावल मंगलसूत्र उनकी नई फिक्र, नए ख्यालात और नई रविश की तर्जुमानी करता है। गो इस मौजू नया नहीं है, इसमें भी गरीबों, मजदूरों और किसानों के शबो रोज और उनकी मुश्किलात व मसाइल वही है जो पहले थे, लेकिन बदलते हुए हालात में उन मसाइल के हल के लिए उन्होंने नया जाविया नज़र अपना कर नई जहतों और नई सिमतों की तरफ अकदाम करने पर जोर दिया है और समाजी बुराइयों के खिलाफ एक मुकम्मल इनकलाब पैदा करने की कोशिश की है। तंग गलियों में और गंदी बस्तियों में जिंदगी बसर करने वाले इंसानों, आलीशान इमारतों और महलों में तईश की जिंदगी गुजारने वाले जमींदारों, जागीरदारों, मिल मालिकों, सरमायादारों और हुकूमत के अहलकारों के मकरू चेहरों की नाकाबिले कबूल तह सूरत अहले सियासत के नापाक इरादों, इंसान और इंसानियत के दुश्मनों, फिरका परस्त अनासिर, कौम मिल्लत के दोस्त और दुश्मन, नापसंदीदा अनासिर, आपसी रवादारी, भाईचारेगी और कौमी यकजहती, मुल्क की सालमियत के बदख्वाहों और खैरख्वाहों, समाजी नाबराबरी, ज़ात पात, छूत छात और रंग और नस्ल के इम्तियाजात में लिपटे हुए लोगों की हकीकतों को अपने नावलों में जगह दी है। प्रेमचंद का हकीकत पसंदीदाना रवैया गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए इंसानों, सदियों से तहकीर आमेज निगाहों से देखे जाने वाले अफराद जहनी मजबूती अता करता है। उनके बाजुओं में नई ताकत, नया जोश, हिम्मत और हौसला पैदा करता है। उन्हें ये भी एहसास दिलाता है कि वो महज गोश्त पोश्त के इंसान ही नहीं बल्कि इनकी रगों में भी वही सुर्ख रंग का खून गर्दिश कर रहा है, वही दिल धड़क रहा है और आंखों में वही नूर है जिससे नसीम सुबह और सूरज की किरणों से लुत्फ अंदोज होने वाले इस वसी अरीस कायनात के हसीन और जमील नज़ारों से फैजयाब होने का हक उन्हें भी हासिल है जो अब तक सिर्फ चंद मखसूस तबके के अफराद को नस्लन बाद नस्ल हासिल है। उनके दिलों में भी ख्वाहिशें और उमंगे पैदा हो सकती है, दिलों में अरमान जाग सकते हैं, उनका दिमाग भी सोच सकता है, उनकी नज़र भी देख सकती है। ये शऊर हिंदुस्तान में बसने वाले करोड़ों किसानों, मजदूरों और मेहनतकश तबके के अफराद के अंदर पैदा करने का सहरा प्रेमचंद की हकीकत पसंदी की मरहूने मिन्नत है। प्रेमचंद की वसत नज़र का सबसे बड़ा कमाल यही है कि उन्होंने समाजी कश्मकश को अपने शऊर और आगही से नावलों के किरदार के जरिए मानवियत अता करते हुए जिंदगी के गुनाहू मसाइल को अपने समाजी नजरियात के लिबादे में तहरीरी शक्ल में सच्ची तस्वीर बनाकर पेश किया है।
1: आप सुन रहे थे बातचीत। बातचीत का मौजू था प्रेमचंद की उर्दू नावल निगारी की खसूसियात। آپ سے مخاطب تھی۔

0: मोहतरमा उज़्मा यज़दानी। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं हुकूमत हिंद के जरिए चलाए जाने वाली अकलियतों की फलाह व बहबूदगी के लिए वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम के सिलसिले में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इस स्कीम की मालूमात। आपसे मुखातिब हैं नसीम सईद, समात फरमाए।
1: अकलियती तलबा की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत होनहार अकलियती तलबा व तालिबात के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज किया गया। यह मंसूबा 23 जुलाई 2008 के हुकूमती फैसले के मुताबिक सारे मुल्क में नाफिज किया गया। यह स्कॉलरशिप स्कीम मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, बुद्धिस्टों और जैनियों के लिए है। ये जमात अव्वल से दहम तक अकलियती तलबा के लिए है। मरकजी हुकूमत के जरिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बराए रास्त बेनिफिट ट्रांसफर DBT मोड के जरिए बराए रास्त तालिब इल्म के अकाउंट पर किया जाता है। इसके लिए आधार कार्ड बतौर दस्तावेज जरूरी है। चूंकि दर्जे अव्वल से आठवीं तक तालीम का हक 2009 एक्ट के जरिए तालीम लाजमी करार दी गई और हर बच्चे को इन दर्जात में हुकूमत मुफ्त तालीम फराहम करती है, इसलिए वजारत बराए अकलियती उमूर सिर्फ 9वीं और 10वीं तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की सहूलत फराहम करती है। इसके तहत 500 रुपए सालाना दाखिला फीस और 350 रुपए ट्यूशन फीस दी जाती है। ये स्कीम मुसलमानों की माशी पसमानदगी के पेश नजर उनमें तालीम के फरोग के लिए शुरू की गई थी, जिससे दीगर अकलियती बरादरी भी मुस्तफीज हो रही है। मतलूबा दस्तावेजात। नंबर एक, हुकूमत के जरिए तस्लीम शुदा तमाम इमदाद याफ्ता गैर इमदादी या सेल्फ फाइनेंसिंग स्कूलों में अकलियती बरादरी के अहल तलबा जो पहली 10वीं जमात में जेर तालीम है। नंबर दो, पिछले तालीमी साल में 50% से ज्यादा निशानात का होना जरूरी है। जमात अव्वल पर यह शर्त जरूरी नहीं है। नंबर तीन, वालदैन की सालाना आमदनी 1,00,000 रुपए से कम होना जरूरी है। उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट दरकार है। एक खानदान में 2 से ज्यादा बच्चे स्कॉलरशिप से फायदा नहीं उठा सकते। इस स्कॉलरशिप के लिए कुल अहल तलबा में से 30% वज़ायफ तालिबात के लिए मुख्तस है। आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है।
0: हुकूमत हिंद के जरिए चलाए जाने वाली अकलियतों की फलाह व बहबूदगी के लिए वजीर आजम के 15 नुकाती प्रोग्राम के सिलसिले में आप सुन रहे थे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इस स्कीम की मालूमात। आपसे मुखातिब थे जनाब नसीम सईद। और इख्तिताम से कबल सुनवाते हैं गजल। कलाम है कैसरुल जाफरी का और आवाज का जादू जगाया है गुलाम अली।

तो मैं अपने वकील को लिखूंगा, वे आपके लिए ठहरने का प्रबंध करेंगे। प्रिटोरिया में मेरे मेमन दोस्त हैं, उन्हें मैं अवश्य लिखूंगा, पर उनके यहां आपका ठहरना ठीक ना होगा। वहां हमारे प्रतिपक्षी की अच्छी रसाई है, आपके नाम मेरे निजी कागज पत्र पहुंचे और उनमें से कोई उन्हें पढ़ ले तो हमारे मुकदमे को नुकसान पहुंच सकता है। उनके साथ जितना कम संबंध रहे उतना ही अच्छा है। मैंने कहा, आपके वकील जहां रखेंगे वहीं मैं रहूंगा अथवा मैं कोई अलग घर खोज लूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आपकी एक भी व्यक्तिगत बात बाहर ना जाएगी। पर मैं मिलता जुलता तो सभी से रहूंगा, मुझे तो प्रतिपक्षी से मित्रता कर लेनी है। मुझे बन पड़ा तो मैं इस मुकदमे को आपस में निपटाने की भी कोशिश करूंगा। आखिर तैयब सेठ आपके रिश्तेदार ही तो है ना। प्रतिपक्षी स्वर्गीय तैयब हाजी खान मोहम्मद अब्दुल्ला सेठ के निकट संबंधी थे। मैंने देखा कि मेरी इस बात पर अब्दुल्ला सेठ कुछ चौंके, पर उस समय तक मुझे डरबन पहुंचे 6-7 दिन हो चुके थे। हम एक दूसरे को जानने और समझने लग गए थे। मैं अब सफेद हाथी लगभग नहीं रहा था। वे बोले, हाँ यदि समझौता हो जाए तो उसके जैसी भली बात तो कोई हो ही नहीं सकती, पर हम रिश्तेदार हैं इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। तैयब सेठ जल्दी मानने वाले नहीं है, हम भोलापन दिखाएं तो वे हमारे पेट की बात निकलवा लें और फिर हम ही को फंसा लें, इसलिए आप जो कुछ करें सो होशियार रहकर कीजिए। मैंने कहा, आप तनिक भी चिंता ना करें, मुझे मुकदमे की बात तैयब सेठ से या किसी और से करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप दोनों आपस में झगड़ा निपटा लें तो वकीलों के घर ना भरने पड़े। मैं 7वें या 8वें दिन डरबन से रवाना हुआ। मेरे लिए पहले दर्जे का टिकट कटाया गया। वहां रेल में सोने की सुविधा के लिए 5 शिलिंग का अलग टिकट कटाना होता था। अब्दुल्ला सेठ ने उसे कटाने का आग्रह किया, पर मैंने हठवश अभिमानवश या 5 शिलिंग बचाने के विचार से बिस्तर का टिकट कटाने से इनकार कर दिया। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे चेताया, देखिए यह देश दूसरा है, हिंदुस्तान नहीं है, खुदा की मेहरबानी है, आप पैसे की कंजूसी ना कीजिए, आवश्यक सुविधा प्राप्त कर लीजिए। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और निश्चिंत रहने को कहा। ट्रेन लगभग 9 बजे नेटाल की राजधानी मैरिट्सबर्ग पहुंची। यहां बिस्तर दिया जाता था। रेलवे के किसी नौकर ने आकर पूछा, आपको बिस्तर की जरूरत है? मैंने कहा, मेरे पास अपना बिस्तर है। वह चला गया। इस बीच एक यात्री आया, उसने मेरी तरफ देखा, मुझे भिन्न वर्ण का पाकर वह परेशान हुआ, बाहर निकला और 1-2 अफसरों को लेकर आया। किसी ने मुझसे कुछ ना कहा। आखिर एक अफसर आया, उसने कहा, इधर आओ, तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैंने कहा, मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है। उसने जवाब दिया, इसकी कोई बात नहीं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैं कहता हूं कि मुझे इस डिब्बे में डरबन से बैठाया गया है और मैं इसी में जाने का इरादा रखता हूं। अफसर ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना पड़ेगा, और ना उतरे तो सिपाही उतारेंगे। मैंने कहा, तो फिर सिपाही भले उतारे, मैं खुद तो नहीं उतरूंगा। सिपाही आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का देकर नीचे उतारा। मेरा सामान

0: उतार लिया। मैंने दूसरे डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। ट्रेन चल दी। मैं वेटिंग रूम में बैठ गया, अपना हैंडबैग साथ में रखा, बाकी सामान को हाथ ना लगाया। रेलवे वालों ने उसे कहीं रख दिया। सर्दी का मौसम था। दक्षिण अफ्रीका की सर्दी ऊंचाई वाले प्रदेशों में बहुत तेज होती है। मैरिट्सबर्ग इसी प्रदेश में था। इससे ठंड खूब लगी। मेरा ओवरकोट मेरे सामान में था, पर सामान मांगने की हिम्मत ना हुई। फिर अपमान हो तो हो। ठंड से मैं कांपता रहा। कमरे में दिया न था। आधी रात के करीब एक यात्री आया। जान पड़ा कि वह कुछ बात करना चाहता है, पर मैं बात करने की मन स्थिति में ना था। मैंने अपने धर्म का विचार किया। या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए, नहीं तो अपमान हो उन्हें सहकर प्रिटोरिया पहुंचना चाहिए और मुकदमा खत्म करके देश लौट जाना चाहिए। मुकदमा अधूरा छोड़कर भागना तो नामर्दी होगी। मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है सो तो ऊपरी कष्ट है, वह गहराई तक बैठे हुए महारोग का लक्षण है। यह महारोग रंग द्वेष। यदि मुझे इस गहरे रोग को मिटाने की शक्ति हो तो शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए। ऐसा करते हुए स्वयं जो कष्ट सहने पड़े सो सब सहने चाहिए और उनका विरोध रंग द्वेष को मिटाने की दृष्टि से ही करना चाहिए। यह निश्चय करके मैंने दूसरी ट्रेन में जैसे भी हो आगे जाने का फैसला किया। सवेरे ही सवेरे मैंने जनरल मैनेजर को शिकायत का लंबा तार भेज दिया। दादा अब्दुल्ला को भी खबर भेजी। अब्दुल्ला सेठ तुरंत जनरल मैनेजर से मिले। जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों के व्यवहार का बचाव किया, पर बतलाया कि मुझे बिना किसी रुकावट के मेरे स्थान तक पहुंचाने के लिए स्टेशन मास्टर को कह दिया गया है। अब्दुल्ला सेठ ने मैरिट्सबर्ग के हिंदू व्यापारियों को भी मुझसे मिलने और मेरी सुख सुविधा का ख्याल रखने का तार भेजा और दूसरे स्टेशनों पर भी इसी आशय के तार रवाना किए। इससे व्यापारी मुझे मिलने स्टेशन पर आए। उन्होंने अपने ऊपर पड़ने वाले कष्टों की कहानी मुझे सुनाई और मुझसे कहा कि आप पर जो बीती है उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जब हिंदुस्तानी लोग पहले या दूसरे दर्जे में सफर करते हैं तो अधिकारियों और यात्रियों की तरफ से रुकावट खड़ी होती है। दिन ऐसी ही बातें सुनने में बीता। रात पड़ी, ट्रेन आई, मेरे लिए जगह तैयार ही थी। बिस्तर का जो टिकट मैंने डर्बन में कटाने से इनकार किया था वह मैरिट्सबर्ग में कटाया। ट्रेन धारावाहिक पठन।
1: गांधी स्मृती हा कार्यक्रम आताच आपण ऐकत होतात। मध्यम लहरी 512.8 मीटर्सवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। आमचा यानंतरचा कार्यक्रम काही क्षणांतच। श्रोतेहो, सकाळचे 10 वाजले आहेत। प्रसारित करीत आहोत क्रिटिकेअर हॉस्पिटल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट सीताबर्डी नागपूर। हॅलो डॉक्टर, हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम काही क्षणातच। श्रोतेहो नमस्कार। क्रिटिकेअर हॉस्पिटल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट सीताबर्डी नागपूर। हॅलो डॉक्टर, या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत। श्रोतेहो, आजचा आपला विषय आहे आयसीयू रुग्णांमध्ये कृत्रिम जीवनाधार, म्हणजे ज्याला आपण आर्टिफिशियल लाईफ सपोर्ट असं म्हणतो। आणि याविषयी मार्गदर्शन देण्यासाठी इथे उपस्थित आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर दीपक जेसवानी। आणि आपल्याला या विषयाशी संबंधित काही प्रश्न आहेत, काही शंका आहेत तर जरूर विचारा। त्यासाठी फोन नंबर्स असे आहेत 25 29 266, अर्थात 2529266 आणि 25 60 101, म्हणजेच 2560101। नागपूर बाहेरून फोन करणाऱ्यांनी एसटीडी कोड लावायचा आहे 0712 07 12। श्रोताओ नमस्कार। क्रिटिकेअर हॉस्पिटल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट सीताबर्डी नागपूर। हॅलो डॉक्टर, इस लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, आज हमारा विषय है आईसीयू पेशेंट्स में कृत्रिम जीवनाधार, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने यहाँ उपस्थित है तज्ञ डॉक्टर दीपक जेसवानी। आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं हैं तो जरूर पूछिए। फोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2529266 और 2560101। नागपुर बाहर से आप फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड जरूर लगाएं। जी हाँ, 0712 07 12। डॉक्टर दीपक जेसवानी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार। आज हमारा विषय है आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट, जो हम आईसीयू में पेशेंट्स को देते हैं।
2: जी।
1: तो ये

0: कृत्रिम जीवन आधार,
1: जी
0: ये जो लाइफ सपोर्ट हम देते हैं, तो पहले तो ये शुरुआत है कि ये क्या है
1: जी
0: जो हम इसे आर्टिफिशियल कहते हैं?
1: जी आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट का मतलब होता है पेशेंट क्यों जो बीमारी है उससे वो लाइफ को सस्टेन नहीं कर पा रहा है उसको हमको क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं
0: जी
1: तो उसको जब तक ये बीमारी ठीक नहीं होती तब तक उसको जीवित रखना आवश्यक है। ये लाइफ सपोर्ट तब तक दी जाती है जब तक ये अंडरलाइंग बीमारी जिस वजह से पेशेंट आया है वो ठीक नहीं हो जाती तब
0: अच्छा
1: तक ये लाइफ सपोर्ट दिए जाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को उस वक्त आईसीयू में ये सपोर्ट दिया जाए ताकि हम लोग उसकी बीमारी को ठीक कर सकें।
0: जी जी
1: जी
0: हमारा विषय कि आईसीयू में पेशेंट्स
1: जी
0: को दिए जाने
1: जी
0: वाला ये जो
1: जी
0: लाइफ सपोर्ट है,
1: जी
0: तो ये सिर्फ आईसीयू में रहता है या
1: जी
0: हम
1: बहुत जरूरी सवाल है ये।
0: जी
1: आईसीयू इसलिए इंटेन्सिव केयर यूनिट अति दक्षता विभाग मराठी मध्ये म्हणतात,
0: हो
1: तर याच्यामध्ये पेशंटला खूप जवळून देखभाल केली जाते, बहुत
0: बर
1: क्लोज मॉनिटरिंग राहता है और 24/7 24 घंटे एक क्वालिफाइड MD डॉक्टर पेशंट की देखरेख करते हैं। करीब करीब 8-10 पेशेंट का ये आईसीयू रहता है,
0: जी
1: इसमें एक जूनियर डॉक्टर एक सीनियर डॉक्टर क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। तो
0: जी
1: जब भी ये आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि ये निकालेंगे कब, और सेकेंड सवाल ये रहता है कि इस आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट से पेशेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। तो ये केवल आईसीयू में ही संभव है, बाहर वार्ड में ये नहीं कर सकते।
0: जी
1: इसमें
0: जी
1: बहुत सारे और भी चीज़ रहती है, इन्फेक्शन और
0: अच्छा
1: कुछ एब्नॉर्मलिटीज़, कुछ समस्याएं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं क्योंकि ये प्रोसीजर इन्वेजिव रहते हैं, शरीर में नलियां डाली जाती हैं। तो उसके लिए बहुत जो एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो ही ये कर सकते हैं, और एक स्वच्छ वातावरण में जहां इन्फेक्शन की रिस्क कम होती है वहीं कर सकते हैं, इसीलिए
0: जी
1: ये सिर्फ आईसीयू में ही पॉसिबल है।
0: जी
1: जी
0: जी डॉक्टर, हम जो लाइफ सपोर्ट, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके प्रकार हम क्या है ये देखेंगे,
1: जी
0: लेकिन पहले श्रोताओं, आप सुन रहे हैं क्रिटिक केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीताबर्डी नागपुर। हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम और आज का हमारा विषय है आईसीयू पेशेंट्स में दिए जाने वाला कृत्रिम जीवन आधार, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तज्ञ डॉक्टर दीपक जेसवानी। आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए। फोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2529266 और 2560101। नागपुर बाहर आप फोन कर रहे हैं तो STD कोड जरूर लगाएं। जी हाँ, 0712 0712। डॉक्टर एक कॉल लेते
1: जी
2: हेलो।
0: हेलो,
2: हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार जेसवानी डॉक्टर साहेब, नमस्कार
1: नमस्कार।
2: सर मला माझे दोन जवळचे नातेवाईक जे आयसीयू मध्ये ऍडमिट होते, सर एक बघण्यात आलेले आहे की आयसीयू मध्ये जेव्हा पेशंट 1-2 महिन्यासाठी ऍडमिट असतो किंवा फ्रॅक्चर झालाय किंवा अजून काही त्याचं हे झालेलं आहे, तर त्यामध्ये सर त्यांना बेड सोर होतात आणि बेड सोर मुळे बरेच प्रॉब्लेम निर्माण होतात आणि मला वाटतं ते त्याच्यामध्ये सेप्टिसिमिया वगैरे होतं आणि त्या पेशंट मग सेप्टिसिमिया झाला की पेशंट वाचण्याची शक्यता जवळपास नसते, साधारण वयस्कर साधारण पेशंट मध्ये 60-70-80 च्या याच्यामध्ये। तर मला या संदर्भात विचारायचं होतं की हे बेड सोर का होतात एवढे स्वच्छता घेऊन आयसीयू मध्ये आणि हे सर्व करून?
1: खूप जरूरी सवाल आहे हे तुम्ही जे विचारलं। बेडसोर ज्या पेशंटला मूवमेंट करता येत नाही, जो लांब बिस्तरवर राहते ज्याला मूवमेंट करता येत नाही, चालता येत नाही, त्यांची जी स्किन राहते त्याचा प्रेशर नेक्रोसिस होतो, म्हणजे त्या भागाला मागे मागच्या भागाला संडासच्या रास्त्याच्या आजूबाजूला जे जागा राहते त्याला कॉन्स्टंट प्रेशर निर्माण होते, तिकडे रक्त सप्लाय कमी होते, त्या भागाला रक्त सप्लाय कमी झाल्याने ती स्किन डेड होते, नेक्रोटिक होते, आणि तिकडे स्किन खराब होण्याचे झाली तर कोणत्याही बॅक्टेरिया कीटाणू जीवाणू तिकडून एंटर करू शकते शरीरामध्ये आणि तिकडे एक मोठा एरिया निर्माण होते ज्यामध्ये स्किन नसते आणि त्याच्या स्किनच्या खाली जे सॉफ्ट टिश्यू आहे, मसल्स आहेत, मांसपेशी आहेत, ते असतात, तर तिकडे बेडसोर इन्फेक्शन लवकर होते। आपलं स्किन एक चांगला बॅरियर आहे, तुम्ही कितीही बॅक्टेरिया स्किनवर टाकले, जीवाणू टाकले, तर आपल्याला इन्फेक्शन होणार नाही, पण जर स्किन नाही आहे तर अंडरलाईंग जे स्ट्रक्चर्स आहेत, सॉफ्ट टिश्यू आहेत, त्याच्यामध्ये लवकरात लवकर इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होऊ शकते, त्याला बेडसोर म्हणतात. कारण की ते प्रेशर एरियामध्ये जिकडे जिकडे हड्डी आहे आपली, त्याच्यावर स्किनला आणि सॉफ्ट टिश्यूला प्रेशर निर्माण

0: होते, कारण की पेशंट पोझिशन चेंज करू शकत नाही. तर डॉक्टरांचा आणि नर्सेसचा रोल काय आहे की एअरबेड टाकावं, त्यांची स्किन ड्राय ठेवावी आणि त्याची जी पोझिशन आहे पेशंटची 3 ते 4 तासामध्ये चेंज करत राहावं. जर ते नाही केलं तर ब्रेकथ्रू होण्याची शक्यता असते, पण हे केल्यावरही पेशंट रिलेटेड फॅक्टर्स असतात. खूप ओबेस मोठा पेशंट आहे, बहुत बूढे पेशंट हैं, बहुत कमजोर है, जिनके प्रोटीन्स कम है, जो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते, जिनकी स्किन बहुत ही डेलिकेट है, ऐसे कई पेशेंट रहते हैं जिनमें सब कुछ करने के बाद भी बेड सोर होता है. ज़ीरो नहीं कर सकते उसको आप, कितना भी अच्छा केयर करें. इवन अमेरिका के हॉस्पिटल्स में, बड़े सिटीज़ के हॉस्पिटल्स में भी उसका इंसिडेंस है, उसको आप पूरी तरह से शून्य नहीं कर सकते. बेड सोर डेफिनेटली एक जनरल नर्सिंग का एक क्वालिटी पैरामीटर है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी समझ ली 10 में से 1 पेशेंट को होता है, और इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है. इसमें से इन्फेक्शन हो सकता है, और पेशेंट अगर खड़ा हो जाए या चलने फिरने लगे तो वो सबसे आसान तरीका है बेड सोर को प्रिवेंट करने का और ट्रीट करने का. तो जब तक पेशेंट चलेगा नहीं, वो बेड सोर ठीक नहीं होगा, बहुत मुश्किल है उसको ठीक करना.
1: जी, अगर पेशेंट मूविंग नहीं है तो ये हो सकता
0: जी,
1: है.
0: जी, हो जी, सकता जी. है.
1: डॉक्टर, क्या इसके प्रकार हैं, जैसे जो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट दिया जाता है, इसके प्रकार
0: जी,
1: क्या
0: है? आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा अवयव खराब हो रहा है.
1: जी,
0: अगर आप सबसे कॉमनली लिया जाए तो आईसीयू में अराउंड 25% लोगों को किडनी फेलियर होता है. शरीर में कहीं भी कोई गड़बड़ी रही, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, कहीं इन्फेक्शन है, तो किडनी सबसे कॉमनली अफेक्ट होती है, क्योंकि किडनी को ब्लड सप्लाई हर मिनट मिलता रहता है. तो जैसे ही कहीं ब्लड प्रेशर कम हुआ, सबसे पहले किडनी अफेक्ट होती है. तो अगर किडनी फेलियर हुई तो जनरली ये दोनों किडनियाँ इन्वॉल्व होती हैं, कोई एक किडनी इन्वॉल्व नहीं होती, दोनों किडनियाँ अफेक्ट होती हैं, उनमें बीमारी आती है, सूजन आती है, और वो काम करना कम कर देती हैं. ऐसे वक्त हमारा काम क्या है कि जब तक ये इन्फेक्शन हम लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे, तब तक हम सपोर्ट दें. तो ऐसे कंडीशन हम डायलिसिस सपोर्ट देते हैं. अगर पेशेंट को निमोनिया है, लंग्स वीक हैं, या लंग्स में पानी भर गया है, सांस लेने में तकलीफ है, उसको बोलते हैं ARDS, तो हम लोग लंग्स के लिए वेंटिलेटर का सपोर्ट देते हैं. या इसी तरह हार्ट अगर कमजोर है तो हार्ट का सपोर्ट. ऐसे अलग अलग आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट होते हैं डिपेंडिंग कि पेशेंट की क्या बीमारी है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है.
1: जी. क्योंकि बहुत बार वेंटिलेटर, ये एक ही लाइफ सपोर्ट सबको पता रहता है कि यही है लाइफ सपोर्ट,
0: बिल्कुल.
1: और लेकिन अलग अलग बीमारी के अलग अलग लाइफ सपोर्ट होते हैं. जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं क्रिटिक केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीताबर्डी नागपुर. हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम, और आज का विषय है आईसीयू पेशेंट्स में दिया जाने वाला कृत्रिम जीवन आधार, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट. और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तज्ञ डॉक्टर दीपक जेसवानी. आपको कुछ सवाल है, प्रश्न है तो जरूर पूछिए. फोन नंबर इस प्रकार है 2529266 और 2560101. नागपुर बाहर से आप फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड लगाएं 0712070712. डॉक्टर, लाइफ सपोर्ट जो दिया जाता है ये कब दिया जाता है, क्या परिस्थिति रहती है तब ये दिया जाता है?
0: एक तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि क्या पेशेंट की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है क्या.
1: जी,
0: अगर ये पेशेंट बीमारी ठीक होने लायक है, जैसे कैंसर नहीं है, टर्मिनल कैंसर नहीं है, तो हम लोग ये टर्मिनल कैंसर है तो हम लोग लाइफ सपोर्ट ऑफर नहीं करते. क्योंकि अगर ये बहुत एडवांस कैंसर है तो आप लाइफ सपोर्ट देके क्या कर लेंगे, कुछ दिन निकालेंगे बस.
1: जी,
0: तो ऐसे कंडीशन में हम रिश्तेदारों को बोलते हैं कि इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकता.
1: अच्छा.
0: लेकिन अगर पेशेंट ठीक होने लायक है, निमोनिया है उसको, केवल ARDS है, इन्फ्लुएंजा कोरोना हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जा सकता है.
1: अच्छा.
0: जब हमको मालूम है कि ये बीमारी ठीक हो सकती है और कुछ समय मिलना चाहिए, तो उस समय को निकालने के लिए हम लोग टाइम बाय करते हैं और पेशेंट को आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट लगाते हैं, ताकि इस किडनी के खराब होने से या लंग्स के खराब होने से पेशेंट के प्राण निकल न जाए और पेशेंट की मृत्यु ना हो जाए. तो हम लोग पेशेंट को लाइफ सस्टेनिंग मेजर्स आर्टिफिशियल सपोर्ट्स लगाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट चलता है आगे और हम लोग उसकी बीमारी को ठीक कर पाते हैं. तो इन पेशेंट्स को जिन जो ठीक हो सकते हैं उनको लाइफ सपोर्ट लगाया जाता है. और ये आर्टिफिशियल रहता है, ये टेम्पररी रहता है, ब्रिजिंग थेरेपी रहती है, जिसमें जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता तब तक ये लाइफ सपोर्ट लगाया जाता है. इसमें कोई समय सीमा बताना बड़ा मुश्किल रहता है. जैसे बीमारी कोई डायग्नोस हुई, उसका ट्रीटमेंट हमको मालूम है, ये 2 चीज़ें हो गई. तीसरा चीज़ रहती है बीमारी का रेस्पॉन्स पेशेंट के शरीर का, वो हमारे हाथ में नहीं है. तो रेस्पॉन्स हर पेशेंट

0: का अलग रहता है, किसी का अच्छा रहता है, किसी का बुरा रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स में समय सीमा बताना बड़ा मुश्किल होता है कि कब तक
1: जी
0: चलेगा ये।
1: जी
0: जी
1: जी जी
0: जी
1: जब ये लाइफ सपोर्ट दिया जाता है तब क्या पूरी तरह से वो ऑर्गन या वो पेशेंट की हालत जो रहती है बहुत
0: जी
1: गंभीर रहती है या
0: जैसे जैसे
1: फेल्योर हुआ
0: किडनी
1: था?
0: काम नहीं कर रही है
1: जी
0: तो हम उसमें शरीर में ब्लड में केमिकल्स, यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड जमा होना चालू हो जाता है। और ये पेशेंट को अगर लाइफ सपोर्ट नहीं दिया गया, ये खून का फिल्ट्रेशन नहीं किया गया, तो ये पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। तो जब ऑर्गन 50% से भी नीचे काम करना शुरू करता है तो हम उसको हम लोग लाइफ सपोर्ट देते हैं, वो चाहे किडनी के लिए डायलिसिस हो या लंग्स के लिए वेंटिलेटर हो या हार्ट काम नहीं कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी अलग अलग मशीन्स आ गई हैं, काफ़ी साइंस काफ़ी एडवांस हो गया है।
1: जी
0: लेकिन पेशेंट के रिश्तेदार को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आप और मैं अमर नहीं है, हर किसी की एक एक्सपायरी डेट है, कब है किसी को नहीं मालूम, हर
1: जी
0: शरीर का रेस्पॉन्स अलग है, हर पेशेंट अलग है और बीमारी का रेस्पॉन्स अलग है। तो कई बार ऐसा होता है कि दो या तीन पेशेंट एक ही बीमारी के आए, उसका डॉक्टर सेम है, दवाखाना सेम है, लेकिन उसका आउटकम रिजल्ट अलग अलग है, कोई पेशेंट बचता है, कोई बहुत लंबा चलता है, कोई एक्सपायर हो जाता है। तो ये शरीर के रेस्पॉन्स पे निर्भर है कि ये
1: जी
0: कितना आगे चलेंगे, कैसे चलेंगे। तो रिश्तेदारों को रियलिस्टिक रहना चाहिए, पेशेंट के जो अदर बीमारियां हैं, उसका एज है, उसका मोटापा है, उसके बाकी प्रॉब्लम्स है, वो ध्यान में रखते हुए आगे चलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और है जो मैं आपको आगे बढ़ के बताना चाहूंगा, कॉस्ट इन्वॉल्व ज्यादा रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो रिश्तेदारों को सोच समझ के सब कुछ करना चाहिए,
1: जी
0: यही इलाज सरकारी दवाखाने में भी अवेलेबल रहता है।
1: जी जी श्रोताओं आप सुन रहे हैं क्रिटी केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीताबर्डी नागपुर। हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम और आज का विषय है आईसीयू पेशेंट्स में कृत्रिम जीवन आधार आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट। और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तज्ञ डॉक्टर दीपक जेसवानी। आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न हैं तो ज़रूर पूछिए। हमारे फ़ोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2529266 और 2560101। नागपुर बाहर से आप फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड जरूर लगाएं। जी हाँ, 0712071712। डॉक्टर, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे गया है या उसको लाइफ सपोर्ट दिया है, ऐसा जब कहा जाता है, अगर डॉक्टर ने ऐसे बताया तो घर के सब आशा छोड़ देते
0: जी
1: हैं
0: जी
1: या कहते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: जी
1: तो ये जो सिचुएशन रहती है तो सही में क्या ऐसे ही होता है?
0: आपने सवाल अच्छा
1: पेशेंट्स
0: पूछा।
1: ने
0: जी
1: क्या,
0: जी
1: उनके परिवार ने क्या सोचना
0: परिवार
1: चाहिए?
0: को ये लगता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे गया मतलब ये लास्ट स्टेज है, अब ये निकल नहीं
1: जी
0: सकता,
1: जी जी
0: अगर मैं साधारण भाषा में बोलना चाहूँ तो,
1: जी
0: ऐसा सोचते हैं लोग। बट जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी मेडिकल एडवांसेस, मशीन्स काफ़ी बहुत एडवांस हो चुकी हैं, डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं, और हम लोग काफ़ी आगे जाके इन पेशेंट्स को ठीक करने में अभी कामयाब हो रहे हैं। सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर पेशेंट की अंडरलाइंग बीमारी ऐसी है जो ठीक नहीं हो सकती, तो डेफिनेट ऐसा हो सकता है कि ये वेंटिलेटर से ना निकले। लेकिन जो क्यूरेबल डिसीजेज हैं उसमें वेंटिलेटर जब भी जरूरत पड़ती है, डॉक्टर बोलता है, तो लगाना चाहिए। वेंटिलेटर लगा रहे हैं इसका मतलब ही पेशेंट सीरियस है, इसका मतलब ही
1: अच्छा
0: है पेशेंट सीरियस है।
1: जी
0: ऐसे ही पेशेंट को वेंटिलेटर को भी लगाते नहीं डॉक्टर, लेकिन अगर आपको बोल रहे हैं तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को मालूम पड़ रहा है कि अब ये पेशेंट कभी भी कोलैप्स हो जाएगा, यानी तुरंत अचानक दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और कहानी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में डॉक्टर्स अगर सजेस्ट करें तो ज़रूर लगाना चाहिए, ये एक ब्रिज है रिकवरी के लिए। और इसमें इसके प्लस पॉइंट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को कितना भी हो जाए तो हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से वेंटिलेटर के लिए एक ट्यूब डाल रहे हैं प्लास्टिक की गले में, जिसके
1: जी
0: द्वारा वेंटिलेटर दिया जा रहा है, श्वास दी जा रही है, तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं बट पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं। इसमें डॉक्टर को कोऑपरेट करके आगे चलना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वेंटिलेटर पर गया तो ये लास्ट स्टेज, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: अच्छा
0: जी
1: अच्छा तो ये हमें सोचना चाहिए
0: जी
1: कि पेशेंट को हमें बचाना
0: जी
1: है, तो
0: जी
1: जो ये जो प्रक्रिया है या ये जो ट्रीटमेंट है ये देना कभी कभी ज़रूरी
0: जरूरी हो
1: रहता है।
0: जाता है।
1: जी डॉक्टर, अभी आपने कहा कि कॉस्ट के बारे में
0: जी
1: आप बता
0: जी
1: रहे हैं, तो
0: जी
1: ये क्या है कॉस्ट?
0: जी, जब भी पेशेंट आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट्स पे रहता है, चाहे डायलिसिस हो, वेंटिलेटर हो, आईसीयू भी है साथ में, क्योंकि आईसीयू
1: जी
0: को आप मना नहीं कर सकते, आईसीयू में ही रखना होगा, तो अमूमन देखा गया है कि हॉस्पिटल का कॉस्ट जो रहता है, हॉस्पिटल के 15 to 20,000 rupees चार्जेस हो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उसके अलावा दवाइयाँ अलग और टेस्ट अलग. तो इस कॉस्ट को हम लोग

0: चाहकर भी रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस, क्वालिफाइड स्टाफ, क्वालिफाइड डॉक्टर, सभी मशीनरी, ये सब काफ़ी कॉस्टली हैं।
1: जी
0: और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को ऐसी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है कि आप लाइफ सपोर्ट्स लगा रहे हो, आईसीयू कर रहे हो, जी पेशेंट की जान बचा रहे हो, तो आपको एक सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग, या आपको टैक्स में कमी कर रहे हैं, या आपका पानी का बिल कम कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो
1: जी
0: हमको
1: जी
0: भी वही कॉस्ट देना पड़ता है जो एक अन्य दुकानदार या बिजनेस को दिया जाता है। तो
1: अच्छा
0: इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, और कितना भी डॉक्टर्स चाहें तो वो कॉस्ट कम नहीं कर सकते हैं। आजकल ह्यूमन रिसोर्सेज स्टाफ का सैलरीज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि क्वालिफाइड स्टाफ है, ये लोग एक्सपीरियंस है बहुत, और यही बैकबोन है हॉस्पिटल की, क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स। तो इसमें कॉस्ट रहता ही है, उसको हम जीरो नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, 15-20 हज़ार रुपये कॉस्ट आने ही वाला है। तो
1: जी
0: ऐसे कंडीशन में रिश्तेदारों को पहले दिन से बताया जाता है कि यही इलाज सरकारी दवाखाने में अवेलेबल है, वो आप
1: जी
0: कर सकते हैं।
1: जी
0: जी
1: डॉक्टर एक कॉल लेते हैं। हेलो।
2: हाँ नमस्ते मैडम, नमस्ते डॉक्टर साहब।
0: नमस्ते
2: डॉक्टर साहब मुझे एक पूछना था आईसीयू के बारे में।
0: जी।
2: सर बाकी के जितने भी हार्ट के पेशेंट हो, कुछ भी हो, कितने
0: जी
2: बड़े बड़े एक्सीडेंट आईसीयू में अगर अच्छी देखभाल करने के बाद बच जाते हैं,
0: जी
2: करीब 90%।
0: जी
2: लेकिन मेरा एक अनुभव है कि जो बर्न केसेस है, बर्न
0: जी
2: केसेस,
0: जी
2: उसमें अगर पेशेंट 50% भी
0: जी
2: अगर उसको बॉडी बर्न हो गई है
0: जी
2: और उसको आईसीयू में रखने के बाद, वो 2-3 महीने के बाद तो रहता है ठीक, लेकिन उसके बाद सर वो जहाँ तक मैंने देखे पेशेंट
0: जी
2: वो एक्सपायर हो जाते हैं 2-3 महीने के बाद। सर उसमें
0: जी
2: क्या रीजन है?
0: आपका एक्सपीरियंस एकदम सही है, आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है काफ़ी हद तक सही है।
1: जी
0: बर्न्स पेशेंट बहुत सीरियस रहते हैं, 40% के ऊपर बर्न्स ये बहुत रिस्की रहते हैं। 40% का मतलब होता है अपने चमड़ी के 40% जल गया, वो बिना चमड़ी के, जैसे कवच कुंडल होता है ना, ये चमड़ी हमारी कवच कुंडल है, ये हमारे को काफ़ी बीमारियों से, काफ़ी इन्फेक्शन से बचाती है, शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होने देती। एक भगवान ने हमको नेचुरल कवच कुंडल दिया है, तो ये चमड़ी निकल जाने से कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, और 2 हफ्ते के बाद अक्सर ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहते हैं पेशेंट्स, और बहुत केयर लगती है इनको, लेकिन 40% से ऊपर आउटकम अच्छे नहीं है, डेथ के चांसेस, मृत्यु के चांसेस ज़्यादा हैं। एकदम सही बोला आपने, और इवन बेस्ट सेंटर्स में भी इसको प्रिवेंट करना मुश्किल है। और बर्न्स के डेडिकेटेड सेंटर रहते हैं, जनरली एक जनरल आईसीयू में, जैसे मेरा आईसीयू एक जनरल आईसीयू है जहां सभी टाइप के पेशेंट्स हैं, तो इसको मैं बर्न्स के पेशेंट्स को वहां नहीं रख सकता, क्योंकि इन्फेक्शन की रिस्क रहती है। तो बर्न्स के आईसीयू अलग रहते हैं, वहीं इनको रखना चाहिए। और बर्न्स का ट्रीटमेंट आईसीयू ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, क्योंकि रिसोर्सेस बहुत लगते हैं, रिपीटेड सर्जरीज लगती हैं, अलग अलग ड्रेसिंग्स लगती हैं, दवाइयाँ बहुत लगती हैं। तो कॉस्ट एक फैक्टर है, सोशल फैक्टर्स है, क्योंकि कोई जल गया है, और दूसरा है कि इसका आउटकम खराब है। बहुत एकदम सही बोला आपने।
1: जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं क्रिटिकेयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी नागपुर। हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम और आज का विषय है आईसीयू पेशेंट्स में कृत्रिम जीवन आधार, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट। और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तज्ञ डॉक्टर दीपक जेसवानी। आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए। फोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2529266 और 2560101। नागपुर बाहर से आप फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड जरूर लगाएं। जी हाँ, 0712-07-12। डॉक्टर, जैसे हमने अभी देखा कि लाइफ सपोर्ट कब लगाया जाता है,
0: जी
1: लेकिन ये कब निकाला जाता है, ये भी
0: जी
1: एक ये सवाल है कि कब क्या सिचुएशन रहती है।
0: 2 या 3 कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग निकालने के बारे में सोचते हैं। जैसे
1: जी
0: लगाते हैं तुरंत हमारे दिमाग में एक बात चलने लग जाती है कि कब निकालेंगे, क्योंकि लगाना आसान है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है, उसके अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन्फेक्शन रेट्स हैं, कुछ
1: जी
0: मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ तकलीफें हो सकती है। तो हम लोग जल्द से जल्द, जैसे ही पेशेंट की बीमारी में इम्प्रूवमेंट दिखता है, हम लोग वीनिंग, वीनिंग का मतलब होता है उसको निकालना शुरू करते हैं। तो जैसे छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, 2-3 महीने का होता है, तो माँ उसको ऊपर का आहार देना शुरू करती है, वैसे ही हम लोग वीनिंग शुरू करते हैं, उसको ट्रायल देना शुरू करते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो जिस बीमारी के लिए पेशेंट को उस आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट डाला गया है, उस बीमारी में इम्प्रूवमेंट रहना चाहिए। जैसे लंग्स में इम्प्रूवमेंट रहेगा तो ही मैं वेंटिलेटर निकाल पाऊंगा, किडनी अगर यूरिन बना रही है, एसिड नहीं है, तो ही मैं वो डायलिसिस को कम कर पाऊंगा या बंद कर पाऊंगा।
1: जी
0: तो
1: जी
0: एक तो पेशेंट में इंप्रूवमेंट दिखा तो हम लोग उसको निकालने की कोशिश शुरू करते हैं, वीनिंग प्रोसेस, उसको टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: दूसरा, अगर

0: पेशेंट मरीज की मृत्यु हो जाए तो निकालना ही पड़ता है, या तीसरी एक सिचुएशन रहती है कि इस ट्रीटमेंट के दौरान हमको मालूम पड़ता है कि ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, इसको कितने भी महीने अगर आप लाइफ सपोर्ट दो तो ये ऐसा ही रहेगा, उस कंडीशन में हम लोग एंड ऑफ लाइफ इश्यूज डिस्कस करते हैं पेशेंट के रिश्तेदारों से कि ये फ्यूटाइल है, फ्यूटिलिटी है, इसमें कितने भी दिन अगर रखेंगे आप तो ये पेशेंट ठीक नहीं होने वाला।
1: अच्छा।
0: घर पे लाइफ सपोर्ट दे नहीं सकते आप डायलिसिस या वेंटिलेटर, तो उस समय विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोग पेशेंट के रिश्तेदारों से डिस्कस करते हैं जब पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, अंडरलाइंग बीमारी हमारे रीच से बाहर हो चुकी है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी,
1: जब हमें कुछ आशा नहीं है तो हम जो लाइफ सपोर्ट है वो निकालते हैं,
0: इसको एंड ऑफ लाइफ इश्यूज बोलते हैं।
1: जी
0: ईओएल।
1: ओके डॉक्टर, एक कॉल लेते हैं।
0: जी
1: हेलो।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग।
2: अमरजीत सिंह बरा, लश्करीबाग, नागपुर से।
1: बोलिए
2: सर। ये मेरा एक ना बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जैसे जो पेशेंट को लाइफ सपोर्ट सिस्टम में होता है या जो मतलब कोमा में भी होते
0: जी,
2: तो सर ऐसे लोग मतलब कितनी मतलब ये रिकवर कर सकते हैं, मतलब सर्वाइवल रेट कितना चांस है इनका, मतलब कि ये वापस मतलब नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे अपनी। मतलब
0: बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें ऐसा है कि डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पेशेंट की एज, उसकी अंडरलाइंग बीमारी क्या है और ये कोमा में किस वजह से गया है। अगर ब्रेन को परमानेंट डैमेज हुआ है ऐसी जगह पे जहाँ पे शरीर के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस और सब ये है कंट्रोल्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसकी कोमा से रिकवरी तो मुश्किल है। तो लाइफ सपोर्ट्स देने के बाद हम कुछ दिनों में डिसाइड करते हैं कि ये लाइफ सपोर्ट्स कंटिन्यू करें कि नहीं करें, क्योंकि अंडरलाइंग बीमारी जिसके वजह से लाइफ सपोर्ट्स लगाए हैं उसमें रिकवरी के चांसेस कितने हैं। तो आमतौर पे हम लोग मोटा मोटी एक ये लगाते हैं कि अगर रिपोर्ट रिकवरी के चांसेस 60-70% हैं बीमारी के, तो हम लोग लाइफ सपोर्ट्स लगाते हैं और कंटिन्यू भी करते हैं। कभी कभी एक महीना डेढ़ महीना भी जाता है ये, कभी कभी और भी लंबा जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट की हालत कैसी है। इस बीमारी के पहले पेशेंट एकदम चलता फिरता नॉर्मल अपना काम करने लायक था, या बेड रिडन था, बिस्तर पर रहने वाला था, बहुत फ्रजाइल है, ओल्ड एज है, न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड है, उसकी अंडरलाइंग बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है जैसे कैंसर की बीमारी, तो ये सब फैक्टर्स को ये रखते हुए हम लोग लाइफ सपोर्ट्स लगाते हैं और मेंटेन करते हैं। तो आमतौर पे उन लोगों को लाइफ सपोर्ट लगाया जाता है जिनके रिकवरी के चांसेस 60-70% रफली रहते हैं। अब ये परसेंटेज जो होता है ये डॉक्टर्स के लिए है, पेशेंट का रिलेटिव का तो एक ही पेशेंट है। मेरे पास 100 पेशेंट है, उसमें से मैंने परसेंटेज बनाए हैं या किताबों में जो दिया वो बता रहा हूं आपको, लेकिन रिश्तेदार के पास तो एक ही पेशेंट है, उसके लिए तो अगर पेशेंट ठीक होगा तो 100% ठीक होगा, नहीं हुआ तो 100% नहीं होगा।
1: अच्छा।
0: तो परसेंटेज डॉक्टर्स के लिए है, पेशेंट को सिर्फ समझना है कि चांसेस कितने हैं।
1: जी, जी सही बात है डॉक्टर। जब ये पेशेंट्स को लाइफ सपोर्ट दिया जाता है तो क्या सावधानी हॉस्पिटल में ली जाती है या कैसे संभाला जाता है?
0: लाइफ सपोर्ट लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि पेशेंट पूरी तरह से डिपेंड करता है इस मशीन पे, हम पे, हमारे स्टाफ पे। इवन जैसे प्रीवियस श्रोता ने पूछा बेड सोर, तो बेड सोर प्रिवेंट करना, स्किन खराब ना होने देना, मोशन हुई है पेशेंट को वो क्लीन करवाना, इन्फेक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है, ऑलमोस्ट 4 में से 1 पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, वो प्रिवेंट करना, कंप्लीट एसेप्सिस, हैंड हाइजीन, क्लीनलीनेस रखना, एक ऐसा माहौल में पेशेंट को ट्रीट करना जहाँ पे इन्फेक्शन की रिस्क कम हो सकती है, एक ट्रेंड स्टाफ देना जो हर वो जरूरत पेशेंट की जो हो रही है उसको पूरी करे, उसको फीडिंग टाइम पे दे, फिजियोथेरेपी दे, पोजीशन चेंज करे, उसको एयर बेड यूज करे, क्लीन तरीके से सक्शनिंग करे, वेंटिलेटर पे हम लोग बलगम को सक्शन करते हैं ट्यूब से, वो करे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक लाइफ सपोर्ट डालने के बाद, हमारे लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं जिसको निभाना मुश्किल है, और हम लोग डॉक्टर्स भी नहीं चाहते कि पेशेंट को कोई लाइफ सपोर्ट लगे, लेकिन जब जीवन को कंटिन्यू रखने के लिए हमको लगाना पड़ता है तो लगाना ही पड़ता है, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता।
1: जी जी डॉक्टर, जब लाइफ सपोर्ट दिया जाता है तो बहुत बार पेशेंट्स के परिवार की हालत भी थोड़ी सी गंभीर हो जाती है, वो भी थोड़े दुखी हो जाते हैं, तो वो उनसे मिलना चाहते हैं, तो उस समय वो मिल सकते हैं या कैसे? ये
0: इमोशनली ये बहुत डिफिकल्ट है, अपने किसी सगे संबंधी को वेंटिलेटर पे देखना बहुत मुश्किल है, और उसमें काफ़ी टर्मोइल रहते हैं, और रिश्तेदारों के मन में काफ़ी सवाल रहते हैं क्या ये पेशेंट निकलेगा, क्या ये पेशेंट जिंदा है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि वेंटिलेटर पे है, नींद की दवाई दी तो क्या ये पेशेंट जिंदा है,
1: बार बार देखने जाते हैं।
0: तो हम लोग ऐसा नहीं है कि ICU एक जेल है, हम लोग बार बार उनको मिलाते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा रहती है। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम लोग कम मिलाते हैं, लेकिन डेफिनेटली
1: मिल सकते हैं,
0: उनको देख सकते हैं। हाँ, वेंटिलेटर पे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन मिल सकते हैं, देख सकते हैं, और डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि

0: रिश्तेदारों को संतुष्टि हो, उनसे मिलाएं, हर तरीके का सपोर्ट हम लोग देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किस इमोशनल टर्मोइल से रिलेटिव्स गुजर रहे हैं. फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से इश्यूज रहते हैं, और मन में यह सवाल रहता है कि क्या हमारा पेशेंट ठीक हो पाएगा. तो उसके लिए बार बार उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना, कंडीशन बताना और रिलेटिव से मिला, पेशेंट से मिलाना ही बहुत जरूरी है, वो करते हैं हम लोग.
1: सही बात है डॉक्टर. ये पेशेंट्स को जब वेंटिलेटर लगता है या कोई भी लाइफ सपोर्ट रहता है तो क्या वो खाना खा सकते हैं या फूड दे सकते हैं?
0: अगर पेशेंट होश में है तो हम लोग जनरली खाना खिलाते हैं, लेकिन वेंटिलेटर पे क्योंकि मुंह से ही वो श्वास की नली गई हुई है तो खाना खिलाना बहुत मुश्किल है. लेकिन 100% पेशेंट्स को हम लोग डाइट देते हैं, 100% पेशेंट्स को नाक से नली डाल के, और वो प्रोटीन फार्मूला फीड देते हैं. ये प्रोटीन फार्मूला फीड हर पेशेंट के लिए अलग से डिज़ाइन किया जाता है, उसकी कैलोरिक नीड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को ध्यान रखते हुए, उसकी किडनी प्रॉब्लम है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है, नमक कम देना है, उस हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं. डाइटिशियन टोटल डेली राउंड लेती है, वो डाइट लिखती है, उस हिसाब से हम लोग राइलस्यू फीडिंग हर पेशेंट को देते हैं. लेकिन जनरली हम लोग जो किचन में फीड्स बनाए जाते हैं, जैसे दाल का पानी, नारियल का पानी, ये नहीं देते, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल नीड्स पेशेंट की पूरी नहीं होती. तो हम लोग फार्मूला फूड जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कितने में कितना है वो देते हैं, और इसमें इन्फेक्शन की रिस्क भी बहुत कम रहती है और सब पेशेंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है.
1: जी डॉक्टर, ये लाइफ सपोर्ट सिर्फ क्रिटिकल केयर में रहता है या बाकी हॉस्पिटल में भी ये रहता है? क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स को इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है इसके लिए.
0: एक्चुअली जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो रिश्तेदार यही करते हैं कि करीबी अस्पताल में ले जाएं.
1: जी,
0: वो डेफिनेटली वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि एक गोल्डन आवर, जैसे हमने एक पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, गोल्डन आवर रहता है, पहला घंटा बीमारी का बहुत महत्वपूर्ण होता है. तो इमीडिएटली पास के अस्पताल में पेशेंट को शिफ्ट कीजिए. वो डॉक्टर जो है वो देख के डिसाइड करेगा कि पेशेंट को हम लोग आईसीयू में रखें या ना रखें, क्या उनके पास आईसीयू अवेलेबल है, ये देख के वो डिसाइड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर पेशेंट को स्टेबलाइज करके प्राइमरी ट्रीटमेंट देके, फर्स्ट एड देके ही आईसीयू में शिफ्ट करते हैं. सभी अस्पतालों में आईसीयू नहीं रहते, लेकिन जो डॉक्टर देखता है वो समझता है कि इसको आईसीयू की जरूरत है, वो तुरंत वो कदम उठाएगा. अगर उनके पास आईसीयू है तो वहां रखेगा, या तो वो किसी अच्छे आईसीयू में शिफ्ट करेगा,
1: में पास के आईसीयू में शिफ्ट करेंगे,
0: लेकिन फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद, प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद.
1: जी डॉक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का विषय है, और हमें कॉल्स भी आ रहे हैं लेकिन हमारा समय भी अभी समाप्त हो रहा है. तो आप आए और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आज श्रोताओं को हुआ. आकाशवाणी की तरफ से आपके बहुत बहुत आभार.
0: धन्यवाद. थैंक यू.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीताबर्डी नागपुर. हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम, और आज का विषय था आईसीयू पेशेंट्स में कृत्रिम जीवन आधार और आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट. और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन किया तज्ञ डॉक्टर दीपक जेसवानी ने. श्रोताओं, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायक थे सचिन कोकणे और सुभाष शास्त्रकार, तथा निर्मिति सहायक थे अतुल साखरकर, और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता अरसपुरे. तो मिलते हैं अगले अनुभाग में, तब तक मैं पूर्वा कुलकर्णी डॉक्टर दीपक जेसवानी के साथ आपसे इजाजत चाहती हूं. नमस्कार.
0: नमस्कार.
1: श्रोताओं, हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम अभी आपने सुना. ये आकाशवाणी और विविध भारती दोनों केंद्रों से एक ही समय प्रसारित हुआ.

0: या के पार ह्या चित्रपटातलं गीत जसपाल सिंग आणि हेमलता यांच्या युगलस्वरात हे गीत आहे. गीत आणि संगीत रवींद्र जैन यांचं.
1: काका, हम ये कह रही थी कि थोड़े दिनों के लिए हमारी छोटी बहन को यहाँ बुला ले. आपकी क्या राय है?
2: राय का बहुत बढ़िया बात है.
3: कैसा रहेगी?
1: कसर? काहे की कसर?
3: गाँव को सुना सुना के रोई नहीं.
1: सुना सुना के कहा?
3: हाँ गाओ ना, तुम तो बहुत अच्छा गा लेती हो.
1: किसने कहा?
3: भौजी ने. ब्याह में भी तो तुम गा रही थी.
1: मगर हम अकेले थोड़ी ना गाती है.
3: हाँ गाओ गाओ.
1: नहीं.
3: अरे गुंजा गाओ ना.

0: संग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
3: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
3: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
3: श्रोताओ, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
3: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर

0: इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
1: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया। इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
1: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
1: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
1: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
1: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओ, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था। मैं नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने, सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे अरे भागो
1: भागो जाओगे अरे भागो अरे अरे सिपाही आ गए
0: अरे अरे भागो जाओगे
2: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व।

सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
4: सिकंदर आ गए, सिकंदर आ गए।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
4: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
4: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं सकते हैं।
0: मैसिडोनिया चलो,
4: वापस चलो, चलो
1: सम्राट। सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब जहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो,
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो।
6: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: अरे

0: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए। नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
1: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया

के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्य कालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: श्रोते हो, आताच आपण NCERT द्वारे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग ऐकला। हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है, और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और

0: तिथि के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा सीआरएसवी की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह की हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश सोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई

0: को 2 दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 1 महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की भावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के 2वें क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए 1वें क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। 2वें हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री

0: पर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसहित 558 किलो हर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 आणि 10 सेकंद झाली आहेत। नादब्रह्म अंतर्गत शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम आता आपण ऐकणार आहोत। निर्मिती नागपूर केंद्र जे आहे या कार्यक्रमात आनंद चिमुटे यांचं ख्याल गायन आपण ऐकणार आहोत। त्यांनी गायलेला राग मधमाध सारंग, तबल्याची साथ संदेश पोपटकर यांची, हार्मोनियमची साथ संदीप गुरमुले यांनी केली। विलंबित रचना एक तालात आहे, बोल आहेत ए बोली आज। द्रुतरचना तीन तालात निबद्ध आहे, बोल आहेत रंग दे रंग। नादब्रह्मांतर्गत शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमात ऐकूया आनंद चिमोटे यांचं ख्याल गायन मधमाध सारंग।

0: श्रोते हो, युवक मित्रमैत्रिणींसाठी युवाणी हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून, आणि ही छत्रपती संभाजीनगर केंद्राची निर्मिती होती. यानंतर ठीक 6 वाजता आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून सुरुवातीला हिंदीतून आणि 6:05 इंग्रजीतून प्रसारित होणाऱ्या बातम्या आम्ही सहक्षेपित करू.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे. हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया. यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी. किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है. प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयास

0: की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।
2: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
3: आकाशवाणी नागपूर हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेत मिळणारी 50,000 रुपयांची रक्कम आता 2 लाखांपर्यंत करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा। विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन संस्थगित। हिवाळी अधिवेशन 7 डिसेंबरपासून नागपुरात होणार। जात पडताळणी प्रक्रियेत सुधारणा करणारं महाराष्ट्र एससी एसटी व्हीजे एनटी ओबीसी एसबीसी सुधारणा विधेयक आज विधान परिषदेत मंजूर। आणि नागपूरसह विदर्भात पावसाची उघडीप, उकाड्यात वाढ। आता सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभाची मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात

0: या गीताबरोबरच भावधारा हा कार्यक्रम येथेच समाप्त होत आहे. यानंतर 8:45 वाजता समाचार संध्या, 9 वाजता न्यूज ॲट 9, 9:15 वाजता स्पॉटलाईट आणि 9:30 वाजता करंट अफेअर्स हे दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारे कार्यक्रम आम्ही सहक्षेपित करू. रात्रीचे 8:45 वाजले आहेत.
1: मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे. प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की. व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई. संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की. उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई. फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से. और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे. हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया. प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है. यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी. किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है. न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है.
2: Free trade agreement is a great opportunity.
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है. न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है. साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं. यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे.
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए.
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यक्रम

0: कार्य अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा

0: तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

0: विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarter-final of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness the performance by the Nad Vocal Ensemble.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी